0: योजिरो नोदा ने लिखा, जो रेड विम्स के मरकजी गुलुकार हैं और इसे गुलुकारा तो आका ने गाया है।
1: इस फिल्म के डायरेक्टर माकोतो शिनकाई के तबसरे के मुताबिक सुजुमे एडवेंचर इंटरटेनमेंट जो है वो एक एडवेंचर इंटरटेनमेंट फिल्म है जो जदीद जापान की अक्कास है। यह आफात से मुतासरा रोजमर्रा जिंदगियों की बहाली की कहानी भी है।
2: माकोतो शिनकाई कहते हैं, हमने जब ये फिल्म तख्लीक की उस वक़्त 2011 के मशरकी जापान में आने वाले शदीद जल्जले की याद अभी दिलों में बाकी थी और उसका असर अभी तक जहनों में था।
1: हमारे अमले की रुकन बताती हैं कि उन्होंने ये गाना इसलिए मुंतखब किया क्योंकि उसने इन्हें जल्जलों की होलनाकी याद दिलाई और ये मेरे दिल को छू गया। वो कहती हैं, मैंने ये गाना इसलिए मुंतखब किया क्योंकि ये जिस फिल्म में इस्तेमाल हुआ था वो जापान में बहुत मकबूल हुई और बहुत से जापानी लोग इसके बारे में जानते हैं। मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तानी लोग इस गाने के बारे में जापानियों से बात करेंगे तो वो जापानी लोगों के ख्यालात और आफात के तजुर्बात के बारे में जान सकते हैं।
2: गीत के बोलों में जिक्र है उस दिल का जो सिर्फ हाथ के लम्स से कांपता था। गुलुकारा के मुताबिक हमें एक दूसरे तक पहुंचने के लिए मानवियत की कितनी तहों को अबूर करना होगा। बेवकूफ़ी ठीक है, बदसूरती ठीक है, सही सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो आइए सुनते हैं।

0: मैं उस वक्त शॉपिंग के लिए निकला हुआ था। कामयामा साहब कहने लगे, शॉपिंग तो आप कल भी कर सकते हैं, लेकिन जो इवेंट मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ वो कल नहीं देख पाएंगे।
1: अच्छा, तो फिर क्या फैसला किया आपने?
0: जाहिर है अगले साल का इंतजार कौन करता। मैं अगले स्टेशन पर उतरा और दूसरी ट्रेन पकड़कर सीधा उस स्टेशन की तरफ रवाना हो गया जहाँ कामयामा साहब की गाड़ी खड़ी थी।
2: अरे ये तो बताएं, इवेंट था क्या?
0: मैं भी यही सोच रहा था। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता टोक्यो के दरियाए अराकावा की तरफ बढ़ रही थी। कामयामा साहब ने अपनी मखसूस उर्दू में बताया कि ये जापानी सकाफत का अहम हिस्सा है। अभी दरिया के करीब पहुंचे ही थे कि अचानक एक धमाके की आवाज़ आई। मैं चौंक गया, लेकिन वो इत्मीनान से गाड़ी चलाते रहे।
1: जी जी, मैं समझ गई, हनाबी, आतिशबाजी के धमाके थे।
0: खदीजा साहिबा, आपने तो सारा सस्पेंस ही खत्म कर दिया। हाँ, हनाबी ही थी। शुरू में मैंने सोचा यार आतिशबाजी ही तो है, पाकिस्तान में भी तो होती रहती है, लेकिन कामयामा साहब से जापानी सकाफत के बारे में उर्दू में जानने का मौका हाथ से कैसे जाने देता, इसीलिए फौरन हामी भर ली। मगर वहाँ पहुंचकर वापस आने को दिल नहीं कर रहा था।
2: तो ये है असल कहानी, ये बताइए वो क्यों?
0: क्योंकि वसीमा साहिबा, ये वो वाली आतिशबाजी नहीं थी जो हम पाकिस्तान में देखते हैं। लोग टोलियों की शक्ल में दूर दूर तक फैले हुए थे। कुछ मुख्तलिफ लोग पुलों और ऊंची जगहों पर चढ़कर नजारा कर रहे थे।
1: तो आप लोग भी किसी पुल पर चढ़े या खंभे पर ही चढ़ बैठे?
0: नहीं नहीं नहीं भाई, हमने फैसला किया कि जितना मुमकिन हो तकरीब के करीब से करीब तर जाए, इसीलिए चलते रहे।
2: पैदल चलते रहे, गाड़ी में चले?
0: गाड़ी में ही थे, मगर असल मसला गाड़ी थी। पार्किंग ढूंढने की टेंशन अलग, आखिर में हमने अलग अलग किस्मत आजमाई का फैसला किया। मैं तो करीब जाकर गाड़ी से उतर गया, जबकि कामयामा साहब ने गाड़ी चलाते चलाते ही आतिशबाजी इंजॉय करने का फैसला किया। मुझे गाड़ी से देखने में वो मज़ा नहीं आ रहा था जो मैं लेना चाह रहा था।
1: अच्छा, तो बैठने की जगह मिली, आप भी पैदल चलते चलते ही इंजॉय करने लगे। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, मैं आपको कथा कलामी कर रही हूँ कि खूबसूरत आतिशबाजी के जो धमाके वो तो साथ साथ जारी थे, है ना? ऐसा ही होगा ना?
0: ऐसा ही, बिल्कुल।
1: अच्छा, वैसे हम भी वहीं सड़क किनारे शीट बिछाकर बैठे थे, खा पी रहे थे और हना भी देख रहे थे। आपको बैठने की जगह मिली या खड़े ही रहे?
0: नहीं नहीं, हालात इतने भी खराब नहीं थे। रश जरूर बहुत था, खास तौर पर उन जगहों पर जहां नजारा साफ था, लेकिन एक अच्छी बात ये थी, पुलिस ने सड़कें आरजी तौर पर गाड़ियों के लिए बंद कर रखी थी, इसलिए सड़क पर ही बैठने की जगह बन गई थी। मैं बैठने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन दिन भर की धूप से सड़क तप रही थी। जो खानदान आए थे वो बाकायदा तैयारी करके आए थे, कोई चटाइयां लाया था, कोई फोल्डिंग कुर्सियां।
2: खदीजा साहिबा की तरह, वैसे आतिशबाजी तो एक बहाना है, असल में तो ये आउटिंग दोस्तों और खानदान वालों के साथ मिल बैठने का सुनहरी मौका था।
1: बिल्कुल। अच्छा खलील साहब, जापानी और पाकिस्तानी आतिशबाजी में सबसे बड़ा फर्क आपने क्या महसूस किया?
0: सबसे पहले तो वक्त की पाबंदी। जिस वक्त का ऐलान किया गया था, एन उसी वक्त पहला गोला आसमान पर रोशन हुआ और आखिरी गोला भी ठीक मुकर्रर वक्त पर दागा गया।
2: दूसरी बात भी बताइए।
0: दूसरी बात वसीमा साहिबा, शायद 5 लाख से भी ज्यादा लोग दरिया के दोनों किनारों से ये मंजर देख रहे थे। सड़क के किनारे यूं लग रहा था जैसे पूरी फूड स्ट्रीट सज गई हो। रिवायती खानों की खुशबू फजा में फैली हुई थी, कहीं मछली पक रही थी, कहीं आइसक्रीम, कहीं बर्फ के गोले। कुछ लोग रिवायती जापानी योकाता और किमोनो में मलबूस थे। गरज बहुत गहमा गहमी थी, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था और यही चीज मुझे हैरान कर रही थी।
1: यही तो हना भी होती है, और क्या होना चाहिए था जिसे आप ढूंढ रहे थे?
0: खदीजा साहिबा, कोई कचरा ही देख लेता, कोई खाने का टुकड़ा, किसी बच्चे की गिरी हुई आइसक्रीम की छींट, कुछ तो जमीन पर नजर आना चाहिए था ना। इतना बड़ा हुजूम, लाखों लोग, इतने बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, मगर जमीन साफ की साफ। मैं ढूंढता रहा, लेकिन कचरे का एक टुकड़ा भी नहीं मिला।
2: अरे वाह।
0: और एक और बात, इतने बड़े हुजूम को संभालने के लिए हमारे यहाँ तो न जाने कितने लटपटदार पुलिस वाले चाहिए। यहाँ एक आध पुलिस वाला मेगाफोन हाथ में लिए इंतहाई अदब के साथ हिदायत दे रहा था और लोग खामोशी से अमल कर रहे थे, न धक्कम पे न शोर शराबा,
2: दोनों तरफ तावन।
1: हाँ जी, और आतिशबाजी देखने का मौका भी मिला या आप यही सब देखते रहे और वक्त गुजर गया?
0: नहीं नहीं, आतिशबाजी साथ साथ इंजॉय कर रहा था, लेकिन आतिशबाजी में भी एक बड़ा फर्क है। यहाँ आतिशबाजी बाकायदा एक फन है, बल्कि ये फनकारों के दरमियान मुकाबला था।